मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलन दी लोड़ की है। हां कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के इस तरह नकल पेश कर देती। लेकिन ये पेश करना भी इस गल दा सबूत है कि जूड़ा केस इना अवतारी पुरुषां ने धारण कीते हुए सन, और जे इना दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो स्टेज ते पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान कीता, और प्रदान करके साफ आग दिता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है मान नाल सतगुरु। इत्थे तक कहिंदे ने इन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ परे हैं। किसी नू शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहिंदे या में रंच न मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां या शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दियां। हूबहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसमे बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ होर हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नू एक पासे करन ते। हूबहु जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने वक्त कहंदे ने इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां सौ गया है तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जांदी है। अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है पशुओं नू जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गऊआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे ते देखिया जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम दे मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया
परमात्मा तो भी दूर हुंदा गया। परमात्मा दे निकट आण लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तों जो अध्यात्मिक चिंतन करदे सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करदा है। कहिंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ए नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ए जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। ए समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे एक पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजण वाली रुत भी ते चाहीदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल ओ प्रफुल्लत भी नहीं आउंदा, ओ पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ए जो रात दा चौथा पैर है, इस नूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ए ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समां है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो स्वभाविक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहा भी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाम। अंतिशकरण की धरती देच जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने, उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। वो कदम बड़े पावन ने, वो चाल बली महान है। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ, दरअसल परमात्मा दी चाल है। ये परमात्मा दी तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचण दा एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंद लाल ते इत्थे तक कहंदे ने, थोड़ी जिहा भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान में शौक, गोया हराम करदन आईंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आईंदा दे वास्ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਤੋ ਪਵਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਪਵਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਹੈ। ਜਤ ਕਥ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ

महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तों फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध च जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा मिथ ए कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणां ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आण के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां जी लग दिया ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप देता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबले शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है, हर थां की वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जब कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे चाया है वाकई टिकाणे दे बदल दें, आब हवा दे बदल दें, वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है, ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन कर लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है, ते शरीर नूं स्वस्थ रखण दे च गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उनां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस दे कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसे हद तक विष बनाया जा रहा है, मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाउण दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी

अनुच्छेद 11 है। तो ब्रह्मा सृष्टि की टोल विच चल पिया, सृष्टि की भाल विच चल पिया, संसार किवें बनिया इस दी खोज विच चल पिया। अगां चल के साडे देश विच इह गल प्रचलित हो गई कि ब्रह्मा संसारी है, संसार दे बनाण वाला नहीं, संसार दे बनाण वाला नहीं है, संसार किवें बनिया इहदा ज्ञान देण वाला है, संसार किवें आलमे वजूद विच आया, इहदी बणतर की है और इह कित्थे तक पसरे होया है, इहदा बहुत कुछ ज्ञान उसने दिता। क्योंकि संसार दे ज्ञान देते ही वेद खड़े ने, इस वास्ते ब्रह्मे नूं संसारी कह दिता। श्री कृष्ण ने इत्थे आके अर्जुन नूं कहा, त्रई गुणी वेद विशा नस्त्रई गुणी भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद तीन गुणा की गल करदे ने, संसार की गल करदे ने, तू मेरी गल सुन, जो मैं कह रहा इस नूं मन, जो मैं कह रहा उस नाल जुड़ो, क्योंकि वे संसार की गल करदे ने। दरअसल संसार भी अपने थां दे उत्ते इतना महान है कि इहदी भी खोज होनी चाहीदी है, और खोज करन दिते ब्रह्मा चलिया, उसका शौक सी, उसकी ये बुक सी। जीवन की बहुपक्षी खोज ब्रह्मे ने की थी। संगीत का जन्मदाता ब्रह्मा है, कविता का जन्मदाता ब्रह्मा है, आयुर्वेदिक का जन्मदाता ब्रह्मा है, 84 लाख जून का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा है। मन दियां हालतां नौ ने, रंग नौ ने, सुरां सत ने, जबान दे रस छे ने, इस तरीके की खोज भी ब्रह्मा करता रहा, और बहुपक्षी खोज उसने जगत के सामने रखी। चूंकि दिमाग आपदे कोल दार्शनिक दा सी, फिलोसफर दा सी, आप दियां बारीक गल्लां हर मनुख दी समझ दे च ना आईयां, इस वास्ते ब्रह्मे दी प्रतिष्ठा साडे देश दे च कोई बहुत नहीं हो सकी, उहदे कोई बहुते मंदर साडे देश दे च नहीं बन सके। जिस तरह कदम कदम दे उत्ते विष्णु दे मंदर ने, इस तरह दे कदम कदम दे उत्ते ब्रह्मे दे मंदर नहीं ने। कारण की सी, उह दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, इतनी गहरी गल करदा सी, गावे को विद्या विखम विचार, इतनी बिखड़ी विद्या अगों रखदा सी, लोगां दी समझ तो परे दी गल सी, संसार दी समझ तो परे दी गल सी। और परे दी गल इस वास्ते करदा सी कि मनुखां दे अंदर परे जाण दी भुख पैदा कीती जा सके, दूर जाण दी भुख पैदा कीती जा सके। मनुख दा दिमाग जिथे है उथे तक दी ही गल कीती जाए तां मनुख दा दिमाग अगे नहीं जा सकदा, अगे बारे नहीं सोचेगा। तो बहुत अगे दी गल ब्रह्मा करदा सी, इस वास्ते उस दे आले दुआले कोई बहुती मनुखता कठी नहीं हो सकी, उसकी पूजा भी साडे देश दे कोई बहुत वड्डे पद्धर ते नहीं हो सकी, और उसके बहुत सारे मंदिर भी नहीं बन सके। इसका नुकता निगाह जो सी गुरु नानक देव जी महाराज इशारा करते ने, गावे को गुण वड्याई आचार, गावे को विद्या विखम विचार। तीसरा दृष्टिकोण जगत दे सामने रखा है शंकर ने, इन्हों का नुकता निगाह विष्णु ते ब्रह्मे नालों बिल्कुल न्यारा सी। उन्होंने जिस ढंग का ज्ञान जगत दे सामने रखा, गुरु नानक देव जी महाराज इशारतन उन्हों का जिक्र करते ने, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। शिव जी दे गाण दा ढंग ए सी, गावे को साज करे तनखे, वे परमात्मा तन दी साजना करके फिर खे कर देंदा, जीवन बना के फिर ढा देंदा। मौत ही मौत है समगर जीवन विच, इत्थे सूरज बनदे ने बुझ जांदे ने, इत्थे धरतियां बनदियां ने मिट जांदे ने, इत्थे मौसमे बहार आंदा है खजां आ जांदी है, इत्थे मनुख जमदे ने मर जांदे ने। मौत ही मौत है, अंत ही अंत है। अंत दा दृश्य जगत दे सामने शंकर ने रखिया। कई दफा मुरदियां दी खोपड़ियां दी माला गल विच पा लैंदा सी, सिर्फ इस वास्ते लोगां नूं पता चले कि मनुख दा अंजाम इही है। वह अपने तन उत्ते राख मल लैंदा सी, स्वास मल लैंदा सी, स्वा मल के भ्रमण करदा सी, सिर्फ इस वास्ते कि आखिर तन ने

परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहिब भाई बख्शी सिंह जी होर ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नूं बख्शिश कीती है उस दी विचार असानू सरवण कराई। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इन्हां दो श्लोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिमें गुरमुखा ने हुक्म किया सी पिछले साल भी कि श्री ननकाणा साहब जी का साका भावा वो कई बारी सुना भी चुके हैं, आप जी ने कैस राही भी सुनिया है, पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का वो पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जियां कणौणियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराण दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहिब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्होंने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो पूजण योग हो गई। जिन्हां गुरमुखां ने उस धरती ते जा के दर्शन कीते उन्हां गुरमुखां दे अंदर नूं भी टिका आ गया जिथे सतगुरु के चरण पै। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धरती नूं भी धन कहो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ

हाथ जोड़ के जुगल बंदना दोनों कर जोड़ के जोग जोग सतगुर धरे अवतारी छे पातशाहियां तक दर्शन कर लए ने ते छियां तो बाद चार पातशाहियां दे होर दर्शन करोगे। भाई गुरदास होरां दी बाणी दी गवाही है। मेरे कहण तो मुराद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने चार जंगा लड़िया ने, चारे जंगा विच फतेह प्राप्त कीती है ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे घर अंदर पांच सपुत्र होए ने ते एक सपुत्री ने जन्म लिया है ते गुरु हरगोबिंद साहिब दे वड्डे सपुत्र ने बाबा गुरदत्ता जी, उस तो छोटे ने बाबा अटल राय जी। मैं संखेप विच ए अर्ज करनी चाहना कि समझ पै जाए कि गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन संबंधी बाबा गुरदत्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी ते जिस मेरे दाते दा अज शहीदी पुरब मना रहे हो, सब तो छोटे ने गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर साहब चार भरावां तो छोटे ने ते एक सपुत्री है मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दी जिदा नाम है बीबी वीरो। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने समय उन्हां दे सामने दो पुत्र चलाना कर गए ने। बाबा अटल अमृतसर दी धरती ते उन्हां चलाना कीता ते बाबा गुरदत्ता जी ने कीरतपुर साहब दी धरती ते चोला त्यागया है। बाबे गुरदत्ते दे घर विच अगे दो पुत्र पैदा होए ने, वड्डे दा नाम सी बाबा धीरमल ते छोटे जिन्हां नूं आपां सप्तम गुरु गुरु हर राय साहब कहने, छोटे पुत्र दा नाम गुरु हर राय साहब सी। बाबा गुरदत्ता जी तो बाद गुरु साहब दे जेड़े साहबजादे ने बाबा अणी राय सूरजमल ते गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, इन्हां दे घर विच ही सन 1621 नूं गुरु तेग बहादुर जी दा जीवन नाल लई चलीए। अमृत वेले मेरे गुरुदेव अमृतसर हरिमंदर साहिब विच टिके ने। एक पैर रात गई है रहिंदी है, आसा दीवार दा कीर्तन पिया हुंदा है, रबाबी सिख प्यार नाल भिज के कीर्तन करदे ने ते इन्नी देर नूं सिख आया ते आके गुरुदेव दे चरणां विच अरदास कीती कि धन गुरु हरगोबिंद साहिब कृपा करो, घर दे अंदर जाओ, आप जी दे घर अंदर माता नानकी दी कुख विचो एक बच्चे दा अवतार होया, जन्म होया जां प्रकाश शब्द आपां वरतने आ। गुरु हरगोबिंद साहिब गंभीर हो गए अत दे, सतगुरु ने आसा दीवार दे कीर्तन तो बाद अरदास भी शामिल होए ने ते परत के उसे गुरु महल विच जिन्हों गुरु रामदास दे वेले उसारिया गया, उसे गुरु के महल विच मेरे गुरु तेग बहादुर जी दा जन्म होया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब चल के गए ने, गुर बिलास वाले ने वचन कीता जाके इस बच्चे नूं तकिया, नाल भाई विधि चांदे, कुछ विद्वाना ने बाबा बुढ़ा जी दा भी जिक्र कीता। खैर गुर बिलास वाला कहिंदा है इस छोटे जिहे बालक नूं गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपने हथां विच लिया है ते हथां विच लैण तो पहला गुर बिलास दे मुताबिक के सतगुरु ने अपना सी चुकाया है ते भाई विधि चंद ने पुछया, दाता चार पुत्र अगे ने, अगे भी सब कोई तके है, पर अज क्यों? धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने कहा, विधि चंद ए मेरा पुत्र पर्दे पाण वाला आ गया है, ए गरीबां दे दुख दूर करन वाला आ गया है, लोकां दे संकट हरेगा ते उस दिन अरदास भी मेरे गुरु पिता ने कीती के गुरु नानक साहिब हे अकाल पुरख कृपा करी, मेरे इस पुत्र नु जुल्म दे सामने अड़ खलोण दी ताकत तू ही बख्शी, इन समर्था बख्शी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने इस पुत्र दी पढ़ाई दा प्रबंध कीता ते अखरी विद्या गुरु तेग बहादुर जी नु भाई गुरदास ने दिती है ते कुछ दिन मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब रमदास गए ने जिथे बाबा बुढ़ा जी अंतले समय टिके ने ते सिख विद्वाना दे मुताबिक कहिंदे ने अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर मैं शब्द वरत रहा क्योंकि भावां गुरु नहीं बने उस वक्त शब्द त्यागमल ते तेग बहादुर ही विद्वान वरतदे ने पर मैं गुरु शब्द इस करके वरत रहा कि मन नहीं मनदा कि कल्ला तेग बहादुर जां त्यागमल कहा जाए। गुरु तेग बहादुर जी नूं रमदास लै गए ने गुरु हरगोबिंद साहिब ते बाबा बुढ़ा जी दे घर छड के आए ने।

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिवें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी। गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है ओ इतिहास दीआं पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लैके सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरतिये दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया। वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरु बिलास पातशाह छेवीं। सारा गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन। किसे ने पातशाह दसवें दा जीवन लिखिया गुरु बिलास पातशाह दसवीं। ये दो ग्रंथ ने एक भाई सुखा सिंह दा लिखिया एक भाई कोयर सिंह दा लिखिया। इस तो इलावा महिमा प्रकाश लिखिया गया एक वार्तक रूप अंदर एक काव्य रूप अंदर। एदे नाल ही मैं एक अर्ज करा जिस विद्वान कवि दा इतिहास तुसी सरवण करदे हो सिख धर्म दे अंदर पहला विद्वान है भाई संतोख सिंह जिन्हें गुरु नानक साहब तो लैके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तक दा जीवन अपनी कलम न लिखे। मैं अर्ज करदे हां इस करके कथा तो पहला भाई साहब भाई संतोख सिंह जी जेड़े बिल्कुल एक गरीब जै परिवार विच पैदा होए ने। इन्हां दे पिता दा नाम सी भाई देवा सिंह जी अंबाले दे नेड़े बुढ़िए पिंड विच रहण वाले सन। इन्हां दे पिता जी नूं चाह सी गुरबाणी दे अध्ययन दा पठन पाठन करन दा। पिता जी इन्हां दे अमृतसर आए उस वक्त श्री दरबार साहब दे मुख सेवादार सन ज्ञानी संत सिंह जी। कवि संतोख सिंह उरां ने ज्ञानी संत सिंह जी उरां कोलों एक काव्य विद्या सिखी उन्हां दे विद्यार्थी बने ते ज्ञानी संत सिंह ओ महान विद्वान ने जिन्हां ने महाराजा रणजीत सिंह नूं कह के हरिमंदर साहब ते सोने की सारी सेवा कराई सी। ज्ञानी संत सिंह उरां कोलों कवि संतोख सिंह ने काव्य विद्या सिखी। परत के आ जिस ग्रंथ की आपां विचार करने उन्होंने ग्रंथ बेअंत लिखे ने। रामायण का उलथा किया भाई संतोख सिंह ने। उन्होंने अमर कोश लिखे गर्भ गंजनी उन्होंने एक जपजी साहब का

0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਬਿਭੂਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋ ਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਪੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਪੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा कहन लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवें तू कहना फलाना बंदा देंदा है अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है कहन लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर कछू कुम्मी पानी विचे आंडे ओदे रेते ते पए ने पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना उन्हां दे दुध दा प्रबंध पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कहिंदे पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे विचे कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपां रिजक पहुंचा सकीए देख तनिया जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिजक देंदा है तू बंदे दी आस ना करी देण वाला केवल एक ओही आ साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो ये सारी सृष्टि की पालना कोई होर पिया कर दे मैं ता गुरमुखां तो बचन सुन के आई हाँ ओ ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार ओदा टिकाणा हर एक लोक दे विचे जो किछ पाया सो एक आवार कहन लगी मैं ता बचन सुने ने महापुरुषां तो के रिजक देण वाला कोई मां बाप नहीं केवल एक वाहिगुरु है
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई
0: कहन लगी देखो भैनो आ तुसी गरीब वल तको भावे मजदूरी करदा है आखर ओ कखां दी कुली विच रोटी पका के खांदा है साडा बापू ते नहीं देंदा जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है कीड़ी तो लैके हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां
0: कहन लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहिगुरु जी दा मुकाबला कर सके इन्ने जीवां नू कोई पाल सकदा है किसे अंदर ताकत नहीं शायद यही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदों विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान ओ तेरा घर की हो जे जिस घर विच तू बैठा है उस घर दे दरवाजे की हो जाने जिस दरवाजे विचो तू लंघना है ते पुछया महाराज हैरानी क्यों कहिंदे ने हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जे जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देना असीं पढ़ने आ सो दर तेरा कहा की हो जाए तेरा दरवाजा सो घर कहा की हो जाए तेरा घर जित बह सर्ब संभाले जिथे बह के तू सारियां दी संभाल करने साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहें
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणां ने ओ गुस्से विच आ गईयां कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं असीं नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है सानू तां साडा बाप ही खाण नू देंदा है सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है
1: नह देखियो दे तो कित राम देओ जाए किस के कब धाम
0: अगो कहन लगियां असीं नहीं देखिया कि वाहिगुरु कोई है किसे दे घर भी जा के रोजी देंदा होवे कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के रोटी दे के जावे
1: अन बस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार
0: कहन लगी देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है रब ने कदी कपड़े सुआ के दिते ने साडा बापू ता अनाज लिआउंदा है कई तरह दे फल लिआउंदा है तू कहनी राम देण वाला है रब देण वाला है खुदा देण वाला है असी नहीं देखिया किसे दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी
0: किन्ने आपस विच गल कर दियां ओ इन्नी कु दृढ़ इरादे वाली है कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो के रिजक देण वाला वाहिगुरु है जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की साडा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आख है सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरत भया ऊपर साख सैन, मुख अप्याओ बैठ को देन। इन्ना कुछ लैके भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दातिया ए निर्गुण, ये तेरे गुणा नु नहीं समझता, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिजक साहब है गुरु वे, साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले द्योरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच किया मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारन हारे। साहब ने बाणी विच किया माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, एवड दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच किया और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईया ते अगो कहंदी देखो जिन्नियां मर्जी दलीलां दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखा तो एक बचन सुनिया है के देन वाला वाहगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, एक किस बात अपर भेदतावत।
0: इन्होंने लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईयां ते बापू दे कोल घर गईयां ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारां जनियां ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिहियां गल्लां करदी पई ए, असीं बैठियां सां अज इकट्ठियां ते गल चल पई कि साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर करदी है।
1: जो प्रतपारे देत हमेश, लगतं ते जिन कीन विशेष।
0: कहन लगे ए तां गल्लां होर करदी ए, आखदी ए रिजक देण वाला कोई होर ए जिहड़े साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है ते जिदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बात की चिंतन तरही।
0: कह लगे असी फिर दलील दिती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप कर दे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो, हम सब कहें कीन निर्धारो।
0: कह लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नई शिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़ियां ए चार कहंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहंदी पई ओ सच कहंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिन्हू समझ नहीं, एक वाहगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रकृत कूल पे ते फूला।
0: किन्ने अपने आ चार गज जमीन ते फुलिया बैठा है, राज गद्दी ते फुलिया बैठा है, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है। मेनू भी रिजक ओने दिता है, राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी, आशे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हें सारिया बच्चियां नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हां दे मन विच है की है, ए आपस विच जेड़ियां गल्लां करदियां ने इकलियां, आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तेन बूझन लागा, कहो तू किसको भुगते भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा, खावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारिया उची आवाज विच कह लगिया, पिता जी जेड़े तन ते बस्त्र पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपा हथां विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छक दिया वा ए भी ता तेरा बख्शा होया है।
1: ब्रित पारत नित दे दहारा, हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं, आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है। एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना है, साडी प्रतपालना तुसी करदे हो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती, राज कोयर बोली इस भाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहिंदी सी देन वाला रब, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्त्र कौन दिंदा है। ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दूवा, भुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान नाल सुन ले, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे, कहिंदे ने तां रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचों दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया ते एक जिहड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रब की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले, सबको भागत होए, करमा ऊपर निबड़ा जे लोचै सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देण वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर काट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ए गल वखरी के भाग आपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा है, ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन आपां पढ़ने आ। कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावै, ए तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सबके सुनते गिरा उचारी।
0: तिन ने इनी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी एक परमेश्वर एक वाहगुरु। अपने भाग खानी आ, फिर गुस्से विच आया कहिंदा चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नू कोड़ दा रोग लगा होया है, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारियो सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नू रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख की परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थामों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानी है। साहब ने बाणी विच कहा दात प्यारी, विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचो निकलन लगा प्रकरण मिलदा, रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल सवेरे, सोने दियां मोहरां रखनियां, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आउणे ना, ते अपनियां अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने, लोकां लंघी जाना। इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी, कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हाँ, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਕੀਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਾ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਨੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਹੇ ਨਵਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਿਤ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਿਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।
1: ਹਾਥ ਪਾਵ ਅੰਗਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਅਸਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਪਣ ਭਾਗ ਤਬ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਏ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੂੰ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗੀ।
1: ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਈ ਸੀਸ ਧਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ।
0: ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
1: ਰਿਸਕੀ ਮਾਂ ਸੁਬਰ ਜਿਤ ਰਹੀ, ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੀ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੋਕ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन श्रवण कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पटां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच श्रवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां, जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरुष कोई गुरमुख जन बैठते ने, यह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तो बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर है। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जिहड़ा पहरन नूं वस्त्र देंदा है, खान नूं भोजन देंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लै के देंदा है, ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तूं क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पे ए भी उस करतार दी दित्ती दात है ऐवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसी नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कह लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि ओ करतार ओ निरंकार तेरे भागां विच जे ओवे तू अपने भागां विच इत्थे नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर लिया। इथों तक आपां ने विचार कीती सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नू आपां वाचने ते

लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे ने। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो, इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तों पहलां मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

0: पर नहीं ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सब तय कहन लगे अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी है ओ ता कीड़िया नू रिजक देंदा है मेरा गुरु ता आवाज दे के कहिंदा है रहन दिस प्रभात तुए ही गावना जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना तू ताता दातार तेरा दिता खावना देन वाला केवल एक ओवे पर जे मैनू तुसी कोड़ी दे लाड़वी ला दोगे मैं इस नू करतार दी रजा समझ के उस वैगुरु दा हुक्म समझ के प्रवान करांगी
1: कहो प्रथम सोई पत मेरा तथा भाग मैं अपनो हेरा
0: जे मेरे भागां विच ओ कोड़ी पति लिखिया महा फिर मेरे भागां नू गुरु परमेश्वर तो बिना कौने मिटाण वाला मैं इस गुरु की आज्ञा नू सत करके मनांगी
1: रहे हटाए लोग मिल कने कुश्ती संग कष्ट बहु पने
0: केंदे ने केवल मां नहीं इस पट्टी पिंड दे लोग भी इकट्ठे हुए ने ते स्याणे दाने आके कहन लगे बचड़िए तू अपने बापू दे हुक्म अगे सिर चुका दे तू मन जा के तेरा पिता सब कुछ देन वाला है पर जितने भी दाने स्याणे आए इस बच्ची ते किसे दी आवाज दा किसे दे बचन दा असर नहीं केवल इको राटे के जो मेरे निरंकार दा हुक्मे ओनु कोई नहीं मेट सकदा
1: रहे फेर सो फिरी ना फेरे फेरे फिरी साथ तिस गेरे
0: कभी जी किन्ने बड़िया ने रोकन दी वर्जन दी कोशिश की थी पर ओ बच्ची रुकी नहीं अखीर ते उस नरदई बाप ने की किता उस कोड़ी दे घर नाल ओदे मापिया दे नाल उन्हें अपना संपर्क बनाया ते कहन लगा मैं अपनी धी नू तुहाडे कोड़ी दे लड़ लाना चाहना जिन्हां दा बच्चा सी उन्हां दा किरदा भी कंब गया दुनी चंदा के देख का साडा बच्चा तां कोड़ ने खा लिया तेरी धी सुनी सुनखी मालक दी कृपा ओदा तन बिलकुल आरोगे तू अपनी धी नू किसे होर सियाणे सूझवान दे लड़ ला दे पर कहिंदे ने ओ दुनी चंद ते कोई असर नहीं उस कोड़ी नू लियांदा गया ते इस बीबी रजनी नू इस बच्ची नू उस कोड़ी दे लड़ लाया ते उन्हें परकर्मा कीतियां इस बच्ची दे फेरे कोड़ी नल करा दिते हन
1: नहदा इसको निरपन दीना मन मूर्ख ने हठ दिड़कीना
0: कवि जी कहिंदे ने धी नू घरों तोरन लगे ओ चारे तियां दूसरियां भी देख दियां पईयां ने जेड़ियां कहिंदियां सन देण वाला इक बापू ए इक पिता है जदों इन्हें धी नू तोरिया केवल तन दे बस्तर दिते ने इस पापी बंदे ने अपने घरों एक टका भी उस धी दी झोली विच कोई दाज वास्ते नहीं पाया कि लै धीए किते मुसीबत आवे इन्हां रुपईयां नू वरत के तू अपना गुजारा कर लई ओ दाज देगा भी क्यों जेड़ा नरदई कठोर किरदे वाला हंकारी मनुख अपनी धी नू कोड़ी दे लड़ लांदा पिया ओदे तो बच्ची वास्ते भले वास्ते कोई आस नहीं हो सकदी
1: कन्या मन प्रभु भावी मान समीशर कैसे पत जान
0: कवि जी आखदे ने उस बच्ची ने परमेश्वर दा भाणा मन्या कहन लगी सतगुरु गुरु नानक साहिब तेरे बचना ते यकीन करके मैं कह दिता है के देन वाला एक परमेश्वर है एक कृपा करी जिदे लड़ तू मैनू लाया है मेरे बापू ने जिस दे लड़ लाया एक ता मैनू एदे ते पूर्ण यकीन बनिया रहे मेरा मन साबित रह जाए मेरा अंदर किते डोले ना तेरे भाणे नू मैं सत करके मन लवां
1: साधन सासरे दारद महा पहरन खान ना प्रापत जहां
0: कवि जी आखदे ने अज पट्टी दे लोक देख दे पए ने कोड़ी दे लड़ लगी ए बच्ची जदो गई सौरे घर दे अंदर ना ता पान नू बस्तर ने ना खान नू भोजन ने जो कुछ कुछ कु दिन ओथे टिकी जो कुछ घर विच है सी ओ अपने पति नू बना के दिता है
1: केतक दिन दुख पहुको सहयो बहर अंत के चल मैं चहयो
0: कुछ दिन इस बच्ची ने दुख भुख नू अपने तन ते सह ले ते अज ओ जदो पति भी देखदा है ते आखदा रजनीए पता नहीं मेरे ता नसीब मंदे सन मेरे भाग ता माड़े ने मैं ता पता नहीं केड़े कर्मां दा फल पिया भोगना वा ते घटो घट तू ता मेरे तो गुरेज कर दी तू मेरे लड़ ना लगदी शायद तेरा भला हो जांदा। पर अगो उस पति बरता ने उत्तर दिता नहीं पति जे एक वारी तेरे लड़ लग गई उस परमेश्वर ने जे लिखिया सी तेरे लड़ लाना कौन है दुनिया की ताकत मैनु रोकन वाली। पर याद रखी मेरे मन विच कदी गलानी नहीं मेरे मन विच कदी नफरत नहीं मैनू होर कुछ नहीं सुझदा केवल एक गुरु की बाणी ते दूसरा मैं तैनू परमेश्वर जान के जितनी वाह लगी मैं तेरी सेवा करांगी।
1: तिस पर रही न बहु दुखियारी पतवर्त धर्म महा दृढ़ धारी।
0: कवि जी आखदे ने कुछ समा तां घर टिकी है परत के इस बच्ची ने अपने पति नू खारी विच बिठा ले। भाई कान सिंह नाभा ने खारी दा अर्थ कीता ओ टोकरी जिस विच अपने पति नू बिठा के अपने शीश उत्ते चुक ले। खारी विच बिठा अपने घर नू छड़ के किसे होर पासे दूसरी थां ते चल पई। नाल कहिंदी ए गुरु गुरु जपी जा मैनू यकीन है कि मेरा गुरु नानक सानू जिथे भी रखेगा अपनी रजा दे अंदर खुश रखेगा। इसने अपने घर नू त्यागया दूसरे थां ते वसीबा कीता है।
1: पत कुश्ती को तर विच खारी अपरग्राम ते मांग आहारी।
0: कहिंदे ने पति नू सिर ते चुक लिया टोकरी विच पा के ते दूसरे पिंडां विच पहुंच गई। पिंड तो बाहर अपने पति दी खारी टोकरी रख दिए ते ए दुनी चंद दी धी पिंड दे विच जा के मंगना शुरू कर दी। कुछ घरां विचों रोटी किते सब्जी भाजी मिल जाए ओनू मंग पिन के ले आउंदी है।
1: पित के पुर ना जाच ना करियो अपर पुरन ते उधर सो भरियो।
0: ते इस बच्ची ने एक होर भी अपना असूल बना ले बाकी पिंडां विचों तां जा के मंगांगी रोटी मिलेगी ओ पति नू देंगी। पर कहिंदी अपने बापू हंकारी ते पिंड विचों मैं मंगन भी नहीं जाना भुख्या तो रहना परवाह। पर जिदे मन विच इन्ना हंकार है कि देण वाला मैं हाँ ओदी नगरी विच तां झोली फैला के किसे घर विचों नहीं मंगना।
1: जाच ते आन आन तीते तो पत अरे आप खाए ले जे तो।
0: पर सिदक वाली इन्नी है जदो किसे पिंड विच मंगन जांदी है ना ते कहिंदी केवल साढ़े दो ली प्रशादा दे दियो लालच नहीं केवल एक वक्त दा प्रशादा मंगना है आप भी शकना है ते पति ओ प्रशादा शक नहीं सकदा ओदे हाथ जड़े ने ओ कोड़ ने खराब कीते पए ने हथां ओदियां ते पट्टी बनी है अपने हथां नाल बुरकियां तोड़नियां ने अपने पति दे मुंह विच पा ओनू आप पहला प्रशादा छकाना बच जाना ते उस बीबी ने आप छकना है।
1: महा सुधर्म तारत धर्म निज पत ते नै तारियो परम।
0: कहिंदे ने ओ महा सुधर्म है अपने धर्म विच दिरड़े अपने पति तो बिना किसे होर दी टेक नहीं। जे सच पुछो ना गुरमत ने ते हिंदुस्तान दी जड़ी पुरानी संस्कृति ओदे मुताबक एक पत्नी नू अपने पति तो बिना किसे दी झाक नहीं। गुरमत ने ता दोना नू बराबर असूल दिते जे गुरु ग्रंथ साहिब ने कह टुंडेंदीए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाओ सुहागनी तिन्ना झाक ना कोर। ते नाल फिर मर्द नू भी संबोधन कीता कहन लगे का क्या गलायो भूष। कहन लगे ओ मूर्ख तू कहना कि मैं कंत हां पर वेल ना जोहे कंत तू। जे तू कंते मालके पतिए ता याद रखी अपनी पत्नी तो बिना किसे वल झाकी ना। ए बाणी दे बचन ने ओ कियो जी भागां वाली है शरीर दो नजर आउंदे ने पर उन्हां दे अंदर दी जोत जिहड़ी है ओ एक है। पति नू प्रसाद पाणी छकाणा है ओदी रजा विच सत बचन करके गुरु गुरु सुना रही है।
1: शीश उठायो फिरे सो जैके जाचे अन्न पोख बहित तैं।
0: ते किन्ने जदों पिंडां विचों लंघ दिए वेखण वाले कई दर्दमंद जड़े ने उन्हां दियां अखां पर आउंदियां ने। कई खौका लै के कहिंदे ने वाह रब्बा ए कियो जी खेड़ वरता दित्ती आ। ओ बच्ची जड़ी अमीर बापू दे घर पैदा होई ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ

0: लगना है। गुरु रामदास दे चरणा विच नमस्कार करन चली हां ते कहन लगा मां तेनू पता नहीं अज हकूमत ने हर मंदिर दे दरवाजे बंद कर दिते ने, अज उथे सिखां नू कतल कीता जाना है। कहन लगी इसे करके ते मैं चली हां। कहन लगे अपने पुत्र नू तां बचा, पुत्र नू कुछ चके ए तां विचारा अजे अनभोल इहनू समझ कोई नहीं। अगो कहन लगी मां आख दिए दीवान पुत्र नू भी इसे करके ले चली हां के गुरु रामदास जे अज खालसे ने इत्थे इशनान करके खून विच इशनान करने तेरे दर दा इशनान कर ली, ओ खून विच इशनान करन नू तैयार है। सोचनिया मेरे पुत्र ने इस तरह ते पता नहीं रहना है कि नहीं दुनिया ते, जदो चार तुपके खून दे एदे भी परकरमा विच डिगण गए ते मेरा पुत्र सदा लई गुरु रामदास दे चरणा विच टिक जाएगा। असी मां पुत्र ओदे दर ते नमस्कार करन आए हां। फिर अगली गल ओ कहिंदा कहिंदा परकरमा विच तुरन वाले गुरसिखा इन्नी तेजी नाल ना चल, इन्नी काली नाल ना चल, ए धरती ते बजरी ते रेत ते मार्बल नहीं लगा। कहिंदा इस एक एक पत्थर दे थले पता नहीं किन्ने कु सिदकी गुरसिखां दे सीस लगे हुए ने। इहदा मतलब वह दर किन्ना कु उच्चा है, उस दर की महिमा अपर अपार है। अज इस पिंगले ने देखा है कि बेरी दे उत्तो कां उड्या, उहने इशनान कीता है, उहदा रंग सफेद हो गया, उहदी बुद्धि उहदी अकल सब कुछ तब्दील होई है।
1: खारी ते निक्षो गिर परयो रिड़त रिड़त पहुंचन तैं करयो।
0: इस विचारे तो तुरिया ता जांदा नहीं, इको दम हल के ना टोकरी विचो निकल के बाहर आ गए। रिड़दा रिड़दा ए जिथे ओ पानी दी ढाब है जिथे आपा अमृत सरोवर कहने हैं ओदे कोल पहुंचया है।
1: सूरन तीर नीर कोश होयो करयो स्नान अदक फल लहयो।
0: किन्ने इको दम एदा हाथ पानी दे अंदर गया है ते जदो उस अमृत जल विच एदा हाथ गया ना ते एदा हाथ बिल्कुल जेड़ा ओ अरोग हो गया। मन विच आया मना ए धरती बरकत वाली आ, गुरा पीरां वाली थाई अपने तन दा पूरा इशनान करा ला है।
1: पंख समेत सुमर्दन कर कर मस्जिद महा चौंब को तर तर।
0: अंदर इको दम ए रिड़दा रिड़दा जल दे विच चला गया, ज्यो ज्यो जल विच गया त्यों त्यों आरोग हो गया। इन्हें उस जल नू अपने पिंडे ते पाया, जिथे जल पैना उथे रोग बिनस गया है।
1: कर पग जुग घर घर गिर परे तत्न पे अर्ज संसरे।
0: कहने जेड़े हाथ पैर झड़दे पे सन कोड़ दे रोग दे नाल ओ इको दम आरोग हो गए ने, तन एदा बिल्कुल ठीक हो गया। जे पुछिए गुरु ग्रंथ साहिब तो दाता ए बरकत वरत दीए, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा हां के सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाहे, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेव को दीनी अपनी सेव, मिटगी चिंत पुनी मन आसा, करी दया सतगुरु गुण तासा, दुख नाथे सुख आए समाए, ढील ना परी जां गुर फरमाए। कहन लगे इच्छा इच्छ पुनी पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। जदो साहब दे बचन पढ़ने दाता एको जे सुके हरे हो सकते ने, मेरा साहब कहिंदा हां मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया। दाता जी ए सुके हरे हो जांदे ने। साहब कहन लगे जे सिमरत खोत सुके हरे, जिदा सिमरन करन नाल ओ सुकियां नू हरिया कर देंदा है, ओदे कुल इन्नी कु ताकती गुर वण तृण हरिया कीतिया। नानक क्या मनुख एक मनुख नू हरियावल नहीं ओ दे सकदा। एक उदासी साधु हरदास होए उन्हें बड़े प्यारे बचन कहे ने, सिख दी भावना है ओ किते भी बैठदा है ते हरमंदर साहब दा ध्यान रोज टिकांदा है ते अरदास भी जदो मंगदा है ना कि सतगुरु सिखां नू सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विशा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। नाल फिर एक तरला लेंदा है श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान, ओ इशनान मंगदा है अमृतसर दे। इहदा मतलब जे इशनान मंगदा है ओहदे विच किन्नी कु ताकत है। ओ साधु कहिंदा है अमृत सरोवर जिथे वे ए शहर तो सब तो नीवी थां ते वे, ओहदे बचन ने ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆਖਦਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਾਪਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੌਲਾ ਤਾਂ ਛਾਬਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਔਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਤੋਲ ਲਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਭਾਰੋ ਕੁੱਤੋ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਖੌਰੋ, ਚੜੋ ਆਕਾਸ਼। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾ ਸਰਮੈ ਤਿਨ ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ? ਜਿਨ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਧਾ ਸਰਮੈ ਤਿਨ ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਿਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀਦਾਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਨ ਪਾਠ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੋ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਦੀਨ ਦਿਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਧਰਮੇ ਤਿਨ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਬਾਤਨ ਤੇ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਨਰ, ਜਿਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਨ ਬਾਤਨ ਤੇ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਨਰ, ਸੋ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜੀਆ ਨਾ ਜੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
1: ਸਕਲ ਅੰਗ ਤੇ ਰੋਗ ਨਸਾਇਓ, ਕੰਚਨ ਵਰਨ ਰੰਗ ਮਨ ਪਾਇਓ।
0: ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਿਣਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ

जप आदि सच जुगाद सच है कि सच नानक खुशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

मुतैर पकड़ के सोटा पकड़ के बैठा गुरु गोबिंद सिंह हाथ पे। कह लगे महंत जी किधर चले गए बैरागी? कहता महाराज मौत तो किन्नू नहीं डर लगता, जिंद किन्नू प्यारी नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह कह लगे तू क्यों नहीं गया? कहता भजदा ते मैं भी सा पर जेड़े पासे जांदा सा केवल तू ही दिसदा पिया सा। हुण देखो दे अंदर दी बिरती। कहता लड़िया मैं कदी नहीं, आ उन दी माला कली फेरी है, जपिया वाहगुरु वाहगुरु है, आ लंगोट बन के आ खपनी जी गल विच पाई बैठा मैं तेरा वा। भावे ए शरीर दे टुकड़े टुकड़े हो जाण मैं तेरे दर नू छड़ना नहीं। साहब ने हथ के क्या वे चंगा उदासियां दी जड़ तू रख ली। उदासी बच गए, उन्हां दी जड़ रखी, केवल एक उदासी रह गया। सारे छड़ के चले गए, कुछ कु कहिंदे दो कु हजार दे करीब गुरु गोबिंद सिंह के केवल सिख ने, इधर दस हजार की फौज ढाई करके आई। ते साहब ने मैदान चुनिया पगाणी दा, पौटा साहब दे नेड़ी अज वो स्थान बन चुका है जिथे ये युद्ध होया है। कदी जायो थले दीवे थां ते इक कबर भी है, इक द्योरा भी है, ओ हरिचंद जिदा अगे जिक्र आउणा है गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नाल बिन्निया गया। एक एक चीज जिहड़ी है जदों भी इतिहासिक थां ते जाओ ना, भावां लिखिया बहुत कुछ हुंदा है पर उत्थे बजुर्गां नूं मिल के पुछ के देखो ते चेते रखियो, बहुत घटनावां ऐसियां ने जिहड़ियां सानूं उत्थे लोकां कोलों मिल गईयां जो लिखता विच नहीं। साहब गुरु गोबिंद सिंह ने पौंटा साहब छड़ दिता, पंगाणी दी थां ते आ के एक गोल गतारा बना लिया। दस हजार की फौज आई, साहब ने अपने पंजे भुआ दे जिहड़े पुत्र सन उन्हां नूं तैयार किया, आप उच्ची तिब्बी ते खलो गए। कृपाल उदास जिहड़ा उदासी सी इह वी साहब दे कोल खलोता, उधरों पहाड़ियां विचों अगवाई करदा आया फतेह शाह। साहब देख के मुस्कुरा पए, ये ओही बंदा जेड़ा कल तक मेरे नाल सुलह करके चरना थले हाथ रखता सी, अज वह गुस्से विच भरिया होया गुरु नूं तबाह करन आया। ते ये विद्वाना ने नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचित्र नाटक विच इस युद्ध का जिक्र किया। साहब कहते ने सब तो अगे इन्हां 400 पठान लाए, ये पठान पहुंचे, इन्हां दा आगू सी हयात खां। हयात खां ने जदों हल्ला किया ते गुरु के भुआ दे पुत्रा पंजा ने एहो जी तीर दी बाछर लाई के पठान दा मूंह मोड़ के रख दिता। पिछा नूं मुड़े ते फतेह शाह कहिंदा पठान जी तुसीं कहिंदे सो सारे उन्हें जट बूट कमी कमीन कठे कीते ने, लड़न वाला ही कोई नहीं, लुट तां सारी तुहाडी है पौंटा साहिब दी, पहली वार नहीं तुसीं चल चके, पिछा नूं मुड़े अगे नूं होवो। कह लगे हयात खां ललकारा मार के लै के अपनी तलवार अगे निकलिया। हुण देखो गुरु की करामात, कोल महंत कृपाल दास उदासी खलोता सी, कहिंदा महाराज ए ओही हयात खां नमक हराम है जिन्हें तेरे घर दियां रोटियां खा के अकिरत कणता कीती। ते पुछिया साहब कहिंदे ने तू की सोचना? कहिंदा लड़िया ते मैं कदी नहीं, पर एक वारी असीस दे इहदे नाल मैं दो हथ करदे चाहना। कदी तको गुरु गोबिंद सिंह दी रहमत, सिखा यकीन कर दृढ़ अराध्या वालियां दी जित पैर चुमदी है। जेड़े लोग अराधी ढा के बह जाण ओह जिते होए भी हार जांदे। आ साहब ने बाणी विच कहा नहीं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक निश्चा भरोसा ही ऐसा है जेड़ा बंदे नूं जित तक लै जांदा है, जदों अंदरों दृढ़ता ही मुक जाए ते फिर चेते रखो जिते होए भी घरां नूं हार के आ जांदे। हयात खां कहिंदा महाराज असीस दिओ मैनूं। ते साहब गुरु गोबिंद सिंह दे दर विच पहले दिन अज कृपाल दास वाहगुरु कृपाल दास उदासी हयात खान नाल टक्कर लैण लई घोड़े ते सवार होए है। साहब ने कहा कृपान नेजा वर्षा कोई नागनी कोई तीर? कहिंदा बस तू असीस दे दे, सारी जिंदगी सोटे ही चलाया है, आ सोटे ही मेरे हाथ विच है, तू नजर करदा रही, देखी अज इस साध दे कारजां ने। साहब ने असीस दे के जदों तोरिया ना ते सामने हयात खां आया ललकारे मारदा, ते कहिंदे ने इक्को दम हथ पै। पठान कहिंदे ने देख गुरु का सूरमा ढिलर जिहा आउंदा पै, शरीर दा भाड़ा सी थोड़ा जिहा मंद। कहिंदा देख ढिलकवां शरीर तुरिया आउंदे गुरु का जरनैल। हयात खां टिचर करके कहिंदा बाबा जी सचखंड दे बूहे ते जा के दस्तक देनी चाहते हो कि साडी जन्नत भी जाना चाहते हो? कह लगा हयात खां तू वार कर, मैं तेरा मुकाबला करना आ। साहब गुरु गोबिंद सिंह टिब्बी ते खलो के तकदे ने। हयात खां ने फिर मजाक कीती, जा बाबा जा के माला फेरिया कर, ते गल विच उन दी माला